तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे, जैसे नीच को कोई ना जाने, नाम जपत ओह चौंकुंट माने। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ, सुख टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाई, दर्शन परसे गुरु कै

0: निरंकार
1: कांद घोर असंख चोर हराम खोर
0: असंख अमर कर जाहे जोर संख गल वढ़त्या कमाहे
1: संख पापी पाप कर जाए संख कूड़िया।

0: समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ती बभूते
1: लंग बनने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वर परम रूपे
0: नमो जोग जगेश्वर परम सिद्धे नमो राज राजेश्वर परम वृद्धे
1: नमो शास्त्र पाणि नमो अस्त्र माणि नमो परम ज्ञात।

0: नमो मन माने नमो रोग रोग नमस्त निशनाने
1: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग
0: सदा मंसरंग परनाशिनु पिरुपेश मास्तल निवासी
1: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता अदो उर्धर धंग गंग ओग हर्ता
0: परम परमेश्वर प्रोज पालंग सदा सर्वदा सदाता दयालंग
1: अशेदीय पेदीय नामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तामंग तेरा जोर चाचरी छंद
0: तले हैं तले हैं पीता
1: प्रभु है अजू है अदेश है अपेश है पचंग पयात छंद
0: वाद्य वाद्य नंदी स्वरूपेण सर्व

0: करीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है।
1: सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है।
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है।
1: सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाहू।
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है।
1: सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पीखी के सर्वत्र पीखी।
0: के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भोग है।
1: सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पिस है।
0: के सर्वत्र मान्य है सदैव अंग प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है।
1: सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है।
0: के सर्वंग कली में के फर्मंग फही में के आकल अला में के साहिब कला में।
1: वजूहत मामल रुजू है में सुसला में सलिखत मदाम में।
0: गरीबल शिकस्त है गरीबल परस्त है बिलंदल मकान है जमीन अल जमान है।
1: समियत मामल जोल निदान है रिपुल जी में रजाए के यकीन है।
0: अनेकल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजल निवाज है गनीमल खिराज है।
1: रक्ष रूपत्र मोक्त भूता प्रभुक्त।

0: है सर्व वारण है,
1: त्रण जाके कराना मन मान है जग जान है,
0: सर्वंग पर है सर्वंकर है, सर्व पासे है सर्वनाशे है,
1: विसंग पर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है,
0: ब्रह्मंड से है खल खंड से है, परते पर है करना कर है,
1: धपा धपा तप कृता कृता अमृता अमृत है,
0: अमृता अमृत है करना कृत है, कृता कृत है धरनी कृत है,
1: ईश्वर है परमेश्वर है कृता कृता अमृता अमृत है,
0: अजपा कृत है अमृता अमृत है, नरनायक है खलकायक है,
1: संपरा कोरोना।

0: शांत रूपे नम परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे
1: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
0: नमो ज्योति ज्योति नमो ज्ञान ज्ञानी नमो भोज भोजे नमो पान पाने
1: नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादंग
0: भूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांग बांके।

0: ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो।
1: सच कहो सुन लियो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
0: काहुले पाहन पूज धरयो सिर काहुले लिंग गरे लटकायो।

0: अवृच्छा मेरी तुम करो सिख बारा सिख संगरो
1: सकल
0: मलेश करो रण का ये अस्तु तब शरणी परे तन के दुष्ट दुख तो है मरे

0: किसे बेटो रहे लोक मिल लाए।
1: ऐसा सतगुरु जे मिलै तिसनु सिर सौंपिया विचों आप जाए।
0: हर
1: वसै मन आए। हरे आप मुलक है भगत न के नानका जिन हर पल्लै पाए।
0: रास मेरी मन बन जारा हर रास मेरी मन बन जारा सतगुर ते रास जानी।
1: हर हर नित जपो जियो लाहा खटो दिहाड़ी
0: एहो तन ते ना मिलिया।

चिंता लाहे हमारी रहाओ, अवर न सूझै दूजी ठाहर, हार पर्यो तौ द्वारी, लेखा छोड़ अलेखा छूटै, हम निर्गुण लेहो उबारी, सद बख्शेंद सदा मेहरबाना सबना दे आधारी।

संत जना की पग पंकज धूरा, एको करता अवरना कोई, गुर शब्दी में लावा होई, जिन सच सेविया तिन रस

कलम सुखिय से गणी अवरूपावन कोई सुज नानक तरिय गुरु बचनी ओंकार सतगुरु प्रसाद राग संत हंडोल महला नावा साधु मन कम साधु एह मन मिथ्या जन।

संग तो हरे कछु न चले ताहे कहाँ लपटा नो सदनंदा दो पर हरे कीर्त और हर कीर्त रे आनो जन नानक सभी मैं पूर्ण एक प्रभु गुआ नव संत महल्ला।

भगवान कह लुब सारे राम नाम तन से जमसो पर काम रहा ये जग तुम्हें कह बहार तै साचा मान्य ए बिच कह विचार धन दर संगत ग्रह के संग न चाल

प्रीत जग स तुटी चूड़ प्रीत काम क्रोध विखे वज्रपाल नाम बिना कैसे गुण चाल हा।

जाए अतलुब दुभानो बिकमाए नैसिर दिसै ककवाए जो मीन कुंडलिया कंठवाए मन भूलो समझस साजनाए गुर शब्द विचारे सहज भाए रहाओ मन भूलो परमस

महीबत साहेब कुदरत कौन हमारी चारे कुंड सलाम करेंगे घर घर सिफत तुम्हारी तीर्थ सिमरत पुन दान किशन लाहा मिले दिहाड़ी नानक नाम मिले वड़ियाई मेका घड़ी संभाली बसंत हंडोल कर दूजा महला जो

जिन सकल बकल बिकल ब्रह्म काटे मोर रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म गुरु काशव काटे कुलक्रम बसंत बाणी नामदेव जी की ओंकार सतगुरु साह साहब संकट वे सेवक भजे चरण काल न जीवे दो कुल लजे तेरी भगना छोड़ो भावें लोग हसे।

राम बसंत कबीर जियो। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद, सुरह की जैसी तरी चाल, तेरी पूंछड़ ऊपर चमक बाल।

बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पर ब्रह्म प्रापाया उतरे सगल सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन।

चोटा ना खाए मन जाम का साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन हुए जी को मन जाने मन कोई मन मार्ग ठाक न पाए मन पास परगट जाए मन मग न चले पांथ मन धर्म से सुनवा दो ऐसा नाम

शंख मूर खंध कोर शंख चोर राम खोर शंख अमर कर जाहे जोर शंख गल बढ़त्या कमाहे शंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ा कूड़े फराहे शंख मलेश मल पा खाहे असंख निंद सर कर है भार।

उन्नी पापी आखनाए कर कर कर न लिख लै जाहो आपे भी जापे खाहो नानक हुक्मी आव हो जाहो। ईस तप दया दत्तान जे को पावे तिलका मान सुनिया मनिया मन की तापाओ अंतर्गत स्मरण आओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण की ते भगत न होए स्वास्थ वाणी ब्रह्माओ सब सुहाण सदा मन चाओ कवन सो वेला वखत कवन कवन थेत कवन वार कवन सिरति माहो कवन जेथो आकार वेल न पाइया पंडती जे हो वै लेख पुराण वक्त न पायो कादियां जे लिखण ले कुरान थेत वार न जोगी जाने रुत माहो न कोई जा करता सृष्टि कौ सा।

भुगत ज्ञान दया भंडार कटकट बाज ही नाद आप नाथ नाथी सब जाकी सवरा साध संजोग जोग दो एकार चलाव ही लिखी आव ही भाग आदिष्ट से आदि साध नीर नाद अनाथ जुग जुगे को वेश एक माई जुगत भी आई तीन चले प्रवाण एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तुस भावे तिव चलावे जिव होवे फरमान ओहो वेख ओ नानक नयावे बहुत आयो बडान आदेश तुसै।

भूर जिथ है सीतो सीता मह मामा हिता के रूप न कथने जाहि नाउ हे मरहि न ठागे जाहि जिनका राम बसे मन माही तिथि भक्त बसे के लोह करह नन सच्चा मन सोई सच खंड बसे निरंकार कर कर वेख न तन्याल तथा खंड मंडल पर भंड जे को कथ है तांत नांत तिथे लो आकार जे जो हुक्म तिवकार विखै विखै कर विचार नानक कथना करणा सार जात पहारा तीज सुनियार विहरण मत वेद हितियार पोखला तपताओ भांडा पाओ अमृत तत्ताल कड़ी है शब्द सच्ची डग साल जन को

काम करो नगर बा भरिया मिल साधु खंडल खंडा ही पूर्व लिखत लिखे कृपाया मद हर लेव मंडल मंडाई कर साधु अंजलि पुन वड्डा।

हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन मन भव खंडाहे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाहे हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख बल बड्डाहे।

बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तो जाए हम किया हम करेंगे हम गुर गवार करने वाला विसरिया दूजे का प्यार माया जेवड़ दुख नहीं सब पथ के संसार गुरमति सुख पाइए सतनाम उधार किस्म मिले सो मिले हो तो बुलारे जाओ ये मन भक्ति रहते सच वाणी निज थाओ मन जेवर तिहर गुण सचे गाओ नानक नाम विश्व सचे मन सुहासी राग मला चौथा कर पहला मैं मान तन मिलो तगला क्यों प्रीत मिले करिया है जा देखा प्रभ अपना प्रभ देखे दुख जाए जाए पुछा तेन सजना प्रभ के तबिद मिले मिलाए मेरे सतगुर मैं तो जब ना कोई हम मूर्ख मुख सुनाल की कर कृपा मिले सोए रहाओ सतगुरदाता हर नाम का प्रभाव मिलावे सोए सतगुर प्रभु बुझा गुरु जी प्रभु न

सच्चे अलख पारा, पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लाभ लोभ हंकारा, नाव पढ़िए नाव बुझिए गुरमति विचारा, गुरमति नाम तन खटिया भक्ति परे भंडारा, निर्मल नाम मनिया दा सच्चे सच्यारा, जिस दा जियो प्राण है अंतर ज्योत अपारा, सच्चा शाह एक तू और जागत बनजारा। सलोक महला पहला, मेहर मसीत सिद्क मुसल्ला, हक हलाल कुरान, सरम सुनत सील रोजा, हो मुसलमान। कन्नी काबा सच पीर, कलमा कर्म निवाज, तस्वी सात इस भाव सी नानक रखे लाज। महला पहला, हक पराया नानका उस और उस गाए, गुर पीर हामा ता परे जा मुरदार ना खाए, गली पिस ना जाइए छुट्टे सच कमाए, मारन पाए हराम मह होए हलाल ना जाए, नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए। महला पहला, पांच निवाजा बखत पांच, पंजा पंजे नाओ, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नियत रास, मन पंजवी सिरत सुनाए, करनी कलमा आखे ता मुसलमान सदाए। नानक जेते कूड़े यार कूड़े कूड़ी पाए पौड़ी, एक रतन पदार्थ बन जदे एक कच्चे दे बपारा, सतगुत उठे पाईन अंदर रतन भंडारा, बिन गुर किने ना लद्या अंधे भौंक मुए कुड़ियारा, मनक दूजे पच मुए ना बूझे बिचारा, एक सबाजो दूजा को नहीं किस अगे करे पुकारा, एक नेतन सदा भौंक दे एक ना भरे तुजारा, विनावे होर तन नाही होर बिख्या सब शारा, नानक आप कराए करे आप हुक्म सवार नहारा। सलोक महला पहला, मुसलमान कहावन मुश्किल, जा होए ता मुसलमान कहावे, अव्वल औल दीन कर मिठा मस्कल माना माल मुसावे, होए मुस्लिम दीन मुहाने मन जीवन का भरम चुकावे, रब की रजाए मने सिर ऊपर करता मने आप गवावे, तो नानक सर्ब जिया मेहरमत होए ता मुसलमान कहावे। महला चौथा, पर हर काम क्रोध झूठ निंदा, तज माया हंका चुकावे, तज काम कामनी मोह तजे ता अंजन माहे निरंजन पावे, तज मान अमान प्रीत सुत दारा, तज प्यास आस राम लिव लावे, नानक सच मन वसै सच शब्द हर नाम समावे पौड़ी, राजे रईयत सिकदार कोई न रहसियो, हट पटन बाजार हुक्म टहसियो, पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने, दर परे भंडार रीते एक खने, ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे, बाल मिलख कर बार किथे से अपने, तंबू पलंग निवार सराय चे लालती, नानक सच दा तार सनाखत कुदरती। सलोक महला पहला, नदियां होवे तेनवा सुम होवे दुध कियो, सगली धरती शक्कर होवे खुशी की अरे नित जियो, पर्वत सोना रूपा होवे हीरे लाल जड़ाओ, भी तू है सा लाहना आखन लहे ना चाओ। महला पहला, पार अठारे मेवा होवे गुरडा होए।

सुर जो फिर दे रखी है ने चल हो वै थाऊ पी तू है सलाहना अख लहना चाओ महला पहला जे देहे दुख लाई है पाप ग्रह दो राहो रात पीने राजे

असगा कीड़ा थाप देह पातशाही लस्कर करे स्वाह जेते जी जीवै लै सा जीवाले ता कह असा नानक ज्यों जो सच्चे पहवै त्यों त्यों देह गिरा। महला पहला एक मास हारी एक तृण खाहे एक ना छत्ती अमृत पाहे एक मिट्टिया में मिट्टिया खाहे एक पौन सुमारी पौन सुमार एक निरंकारी नाम आधार जीवे दाता मरे न कोय नानक मुठे जाहे नाही मन सोए पौड़ी। पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमती आप गवाए नाम ते आई है दूजी कारे लाग जन्म गवाई है बिना वेस वासाब बेस पैंजे खाई है सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है बिन सतगुरु सेवे नाही सुख निवास फिर आई है दुनिया खोटी रास गुण कमाई है नानक सच खरा सलाहे पत सिउ जाइए सो लोक महला पहला तुद पावे ता वावे गावे तुद पावे जल नहावे जा तुद पावे ता करे विपूता सिंगी नाद बजावे जा तुद पावे ता पढ़े कतेबा मुला सेख कहावे जा तुद पावे ता होवे राजे रस का सब बहुत कमावे जा तुद पावे तेग बोगावे सिर मुंडी कट जावे जा तुद पावे जाहिद संत सुन गल्ला कर आवे जा तुद पावे नायर चावे तुद भाणे तू पहावे नानक एक कहे बेनती और सगले कूड़ कमावे। महला पहला जा तू बड़ा सब डियाईया चंगे चंगा होई जा तू सच्चा ता सब को

मुड़े फिर पाछे पछताए रे रहा अंता तंत नीत रे अंत न चाहे जाए अंत को चाहन जो गए से आए अंत गए आपन लिया जे मिले ता सब को पागट होए कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब को है नानक करना जिन किया सोई सार करे हुकन जापी खसम का हुकन जामी खसम का किसे बढ़ाई दे गौड़ी बैरागन महला पहला हनी होवा बन बसा कंद मूलचन खाओ गुर प्रसादी मेरा शह मिला हूँ वार बार हूँ जाऊं जियो मैं बंजार राम की तेरा नाम बखर बापार जी रहाओ को किल हुआ अंब बसा सहज शाद विचार सहज सुभाए मेरा सोह मिले दर्शन रूप अपार मछली हो वाओ जल बसा जी जंत सब सार और वार पार मेरा सोह मिले हो मिलोगी बहा पसार नागन होवा तर बसा शाद बसे पौ जाए नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए गौड़ी पूरी जी की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जयकर कीर्त आखिए करते काहे विचारो तितकर गावो सोहेला सिबरो से जनहारो तुम गावो मैं निरपो का सोहेला हों वारी जाऊं जित सोहले सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन सुमार संभव सहा लिखिया मिलको पावो तेल देव सज आसीसणिया ज्यो होवे साहिब से मेल कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से दह आवन राग गौड़ी गुरुरी महला तीजा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर मिले हर मेला होई आपे मेल मिला वे सोई मेरा प्रभ सब विद आपे जाने हुक्मे मेले शाद पछाने सतगुर कै पह परम पौ जाए पह राचे सच रंग समाए रहाओ गुर मिले हर मन बस हर गुर मिले हर मन बसे सुभाए मेरा प्रभ पहरा कीमत नहीं पाए शब्द सलाहे अंत न पारा वार मेरा प्रभ बख्शे बख्शनहार गुर मिले सब मत बुद्ध होए मन निर्मल बसे सच सोए सच बसे साची सवकार उत्तम करनी शाद विचार गुरते साची सेवा होए गुरमुख ना पछाणे कोए जीवे दाता देवनहार नानक हर नामे लगे प्यार गौड़ी गौरेरी महला तीजा गुरते ज्ञान पाए जन कोए गुरते बूझे सीजे सोए गुरते सहज साच विचार गुरते पाए मुक्त द्वार पूरे भाग मिले गुर आए साचे सहज साच समाए रहाओ गुर मिले तिश्ना अगन बुझाए गुरते शांत बसे मन आए गुरते पवित्र पावन सुच होए गुरते शाद मिलावा होए बाज गुरु सब परम पुलाई बिनावे बहुता दुख पाई गुरमुख होवे सो नाम त्याई दर्शन सच्चे सच्ची पत होई किसनो कहिए दाता एक सोई कृपा करे शब्द मिलावा होई मिल प्रीतम साचे गुण गावा नानक साचे साच समावा गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा सो थाऊ सच मन निर्मल होए नाच निवास करे सच सोए साची बाणी जुग चारे जापे सब किच साचा आपे आपे कर्म होवे सा संग मिलाए हर गुण गावे बैस सो थाए रहाओ जलो एह जेवा दूजे पाए हर असना चाखे फीका आ लाए बिन बूझे तन मन फीका होए बिन नावे दुखिया चले आ रोए रसना हर रस चाख्या सहज सुभाए गुर कृपा ते सच समाए साचे राती गुर शब्द विचार अमृत पीवे निर्मल तार नाम समावे जो भांडा होए ऊंदे भांडे टिके ना कोए गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा एक गावत रहे मन साध न पाए होमे बिच गावे बिरथा जाए गावन गावे जिन नाम प्यार साची बाणी शब्द विचार गावत रहे जे सतगुर भावे मंत्र राता नाम सुहावे रहा एक गावे एक भक्त करे नाम न पावे बिन असनेह सच्ची पद गुर शब्द प्यार अपना पे राख्या सदा और तहार भगत करे मूर्ख आप जनावे नच नच टपे बहुत दुख पावे नचे टपे भगत न होए शब्द मर है भगत पाए जन सोए भगत बशल भगत कराए सोए सच्ची पद बिचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाणे गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए
मन मारे दारू जाने कोए, मन शाद मरे बुझे जन सोए। जिसनु बख्शे दे वडियाई, गुर प्रसाद हर बसे मन आई रहाओ। गुरमुख का निकार कमावे ता इस मन की सोजी पावे। मन में मत में गल मिकदारा, गुर अंकस मार जीवा लनहारा। मन सा जादे जन कोए, अचार चरे ता निर्मल होए। गुरमुख ए मन ले आसवार, हमें भी तो तरे बिकार। जो तुर राखियन मेल मिलाए, कदे ना बिछड़े शब्द समाए। अपनी कला आपे ही जाने, नानक गुरमुख ना पछाने। गौरी गुआरी री महला तीजा, हमें बिच सब जग बराना। दूजे पहे परम पलाना, बहु चिंता चितवे आपना पछाना। तंदा करत्या अनदिन बिहाना, हिदे राम रमो मेरे पाई। गुरमुख रसना हर रसन जाई रहाओ। गुरमुख हृदय जिन राम पछाता, जग जीवन से जुग चारे जाता। हमें मार्ग शब्द पछाता, कृपा करे प्रभु कर्म विधाता। से जन सच्चे जो गुर शब्द मिलाए, तहावत बरजे ठाक रहाए। नाम नाव निंद गोते पाए, हर कृपा ते हर बसे मन आए। राम राम करते सुख शांत शरीर, अंतर बसे ना लागे जम पीर। आपे साहिब आप बजीर, नानक सेव सदा हर गुणी गहीर। गौड़ी गुहारी महला तीजा, सोके बिसरे जिसके जी पराना। सोके बिसरे सब माहे समाना, जित सेविये दरगा पत परवाना। हर के ना बिटो बल जाओ, तू बिसरे तद ही मर जाओ। रहाओ तिन तू बिसरे, जे तुद आप लाए। तिन तू बिसरे जे दूजे पाए, मनमुख अज्ञानी जो नहीं पाए। जिन एक मन तुठा, से सतगु सेवा लाए। जिन एक मन तुठा, तिन हर मन बसाए। गुरमति हर नाम समाए, जिना पोते पुन से ज्ञान बिचारी। जिना पोते पुन तिन होमे मारी, नानक जो नाम रते तिन को बलिहारी। गौड़ी गुआरी महला तीजा, तू अकथ क्यों कथया जाए। गुशाद मन मन माहे समाहे, तेरे गुण ने कीमत नह पाए। जिसकी बाणी तिस माय समाणी, तेरी अकथ कथा गुशाद बखानी रहा। जय सतगुर तै सत संगत बनाई, जय सतगुर सहजे हर गुण गाई। जय सतगुर तहां हमें शब्द जलाई, गुरमुख सेवा महली थाऊं पाए। गुरमुख अंतर हर नाम बसाए, गुरमुख भगत हर नाम सवाए। आपे दात करे दातार, पूरे सतगुर से लगे प्यार। नानक नाम रते तिन को जयकार। गौड़ी गुआरी री महला तीजा, एक से सब रूप है रंगा। पौन पानी बैसंतर सब सहलंगा, भिन्न भिन्न वेखे हर प्रवरंगा। एक चज एकू है सोई, गुरमुख विचारे बेला कोई रहाओ। सहज पवे प्रभ सबनी थाई, कहां गुप्त प्रगट प्रभंत मनाई। आपे सुत्यान दे जगाई, तिसकी कीमत किने न हुई। कह कह कथन कह सब कोई, गुर शब्द समावे बूझे हसोई। सुन सुन वेखे शब्द मिलाए, बड़ी बड़ाई गुर सेवा ते पाए। नानक नाम रते हर नाम समाए, गौड़ी गुआरेरी महला तीजा। मनमुख सूता माया मोह प्यार, गुरमुख जागे गुर ज्ञान विचार। से जन जागे जिन्ना प्यार, सहजे जागे सवे ना कोए। पूरे गुर ते बूझे जन कोए रहाओ। असांत अनाड़ी कदे न बूझे, कथनी करे तै माया ना लूझे। अंध अज्ञानी कदे न सीजे, इस जुग में राम नाम निस्तारा। बिल्ला को पाए गुर शब्द बिचारा, आप तरह सगले कुल उधारा। इस काल युग में कर्म धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल के कर होई। नानक नाम बिना को मुक्त ना होई। गौड़ी महला तीजा ग्वारेरी, सच्चा अमर सच्चा पातशाह। मन साचे राते हर बेपरवा, सच्चा मैल सच नाम समाहो। सुन मन मेरे शब्द विचार, राम जपो भव जल उतरो पार। हाओ परमे आवे परमे जाए, ए जग जन्मया दूजे पाए। मन मुख ना चेते आवे जाए, आप पुला के प्रभा पुलाया। यो जियो बिडानी चाकरी लाया, महा दुखटे बिरथा जन्म गवाया। कृपा कर सत गुरु मिलाए, एक नाम चेते बिचो परम चुकाए। नानक नाम जपे नाव नाव निध पाए। गौड़ी गुआरेरी महला तीजा, जिना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए। गुर सेवा ते मन पत्याए, से धनवाद हर नाम कमाए। पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई। गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ। आप छाने मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावे सोए। हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सहज मिलावे सोए। दूजे पाए न सेव्या जाए, हमें माया महा दो बेख खाए।
पुत कुटुंब गृह मुहिया माए मन अंधा आवे जाए हर नाम देवे जन सोए अंधेर भक्त गुरु शब्दी होए गुरमत बेला बूझे कोए नानक नाम समावे सोए गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा गो सेवा जुग चारे होई पूरा जनकार कमावे कोई अखोट नाम तन हर तोट ना होई एथे सदा सुख दा सोभा होई ए मन मेरे भरम ना कीजै गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ सतगु सेवे से महापुरख संसारे आप उदरे कुल सगल निस्तारे हर का नाम रखे उर तारे नाम रते पौजल उतरे पारे सतगु सेवे सदा मन दासा होमे मार कमल प्रगासा अनहद बाजे निज करवासा नाम रते करमाए उदासा सतगु सेवे तिनकी सच्ची बाणी जुग जुग भगती आख बखाणी अन दिन जपे हर सारंग पाणी नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा सतगुर मिले बड़भाग संजोग हृदय नाम नित हरस भोग गुरमुख प्राणी हर ना गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए जन्म जीत लाहा ना पाए रहा ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा गुर कृपा ते किने बिलै चख डीठा कर्म कांड बह करे आचार बिनावे त्रिग त्रिग हंकार बंधन बाध्यो माया फास जन नानक छूटे गुर प्रगास मोहला तीजा गौड़ी बैरागन जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है क्या धरती मदे पानी नाही जैसे धरती मदे पानी प्रगासिया बिन पगा बरसत विराही बाबा तू ऐसे परम चुकाही जो किच करत है सोई कोई है रे तैसे जाय समाही राम इसी पुरख होए के क्या ओहे कर्म कमाही नाना रूप सदा है तेरे तुझी माहे समाही इतने जन्म भूल परे से जा पाया इतने जन्म भूल परे से जा पाया त भूले नाही जा का कार्य सोई पर जाने जे गुर के शब्द समाही तेरा शब्द तू है हे आपे भरम कहाही नानक तत तत सो मिलिया पुनरप जन्म न आही गौड़ी बैरागन महला तीजा सब जग काले वस है बादा दूजे पाए हमे कर्म कमाव दे मनुख मिले सजाए मेरे मन गुरचरनी चित लाए गुरमुख नाम निदान लै दरगा ले छाए रहाओ लख चौरासी भरम दे मन आवे जाए गुर का शब्द न चीनियो फिर जो नी पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम बसिया मन आए अंदर भक्ति रते हर नामे सुख समाए मन शब्द मरे प्रतीत होए हमे तजे बिकार जे नानक करमी पाईन हर नामा भगत भंडार गौड़ी बैरागन महला तीजा पेड़े दिन चार है हर हर लिख पाया सो अबंती नार है गुरमुख गुण गाया पेवकड़े गुण समले सोहरे बास पाया गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया ससरे पहिए पिर वसे कह के तबिद पाइए आप निरंजन अलाख है आपे लेखाइए रहाओ आप ही प्रभ देह मत हर नाम ते आइए बड़ पागी सतगुर मिले मुख अमृत पाइए हो मैं दुबदा बिन सजाए सहजे सुख समाइए है सो आपे आप वर्तदा आपे ना हिलाइए मन गर्भ ना पायो अज्ञान इयाने सतगुर सेवा ना करे फिर पछतान गर्भ जोनी बस पाइंदे गर्वे गल जाने मेरे करते एवे भावदा मन मुख परमाने मेरा हर प्रभ लेख लिखाया तुर मस्तक पूरा हर हर नाम ते आया पेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंद बीरा हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा गौड़ी बैरागर महला तीजा सतगुरु ते ज्ञान पाया हर तत बिचारा मत मलीन प्रगट पई जप नाम पे मुरारा शिव सख्त मिटाइया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाइये संत जनो जिस देखो जीवा हर बिन चसा ना जीवती गुर मेल्यो हर रस पीवा रहाओ हाँ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सत पुरख है जिन भक्त हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुण दाता हर राय है हम अगने आरे पापी पाथर डूब दे गुरमत हर तारे तू गुण दाता निर्मला हम अगने आरे हर सनागत राख लिहो मूड मुग्ध निस्तार सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन ते आया सज्जन हर प्रपाया कर सोहे लागाया हर दया अवतार प्रभ बेनती हर हर चिताया जन नानक मंगे धूड़ तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारेरी महला चौथा चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद
ਪੰਡਿਤ ਸਾਸ ਸਿਮਰ ਪੜਿਆ, ਜੋਗੀ ਗੋਰਖ ਗੁਰ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਹਰ ਜਪੜਿਆ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਗਤ ਰਾਮ ਹਮਾਰੀ, ਹਰ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਰ ਭਉ ਜਲ ਤੂੰ ਤਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਭੂਤ ਲਾਏ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ, ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ, ਖੱਤਰੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੂਰ ਤਨ ਪਾਵੇ, ਸੂਦ ਬੈਸ ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਨਾਮ ਛਡਾਵੇ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੂੰ ਆਪ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਮੈਂ ਅੰਦਲੇ ਹਰ ਟੇਕ ਟਿਕਾਈ, ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹਰ ਕੀ, ਭੱਜ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਜਨ ਕੀ, ਤਰ ਭਉ ਜਲ ਅਕਾਥ ਕਥਾ ਸੁਨ ਹਰ ਕੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇ ਲਾਏ, ਹਰ ਸਸਨਾ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਹਾਉ, ਜੋ ਜਨ ਧਿਆਵੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਤਿੰਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੋ ਹਰ ਰਾਮਾ, ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉਤਮ ਕਾਮਾ, ਜੋ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੋ ਜਨ ਹਮਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਭਾਵੇ, ਜਨ ਪਗ ਰੇਨ ਬਡ ਭਾਗੀ ਪਾਵੇ, ਸਾਂਝ ਨਾ ਸਿਉ ਪੀਤ ਬਨ ਆਈ, ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਤ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਪਾਈ, ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਈ। ਗੁਆੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਾਤਾ ਪੀਤ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਖਾਏ, ਮੀਨੇ ਪੀਤ ਪਈ ਜਲ ਨਹਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੁਖ ਪਾਏ, ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਮੇਲੋ ਹਮ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਹਮਾਰੇ, ਰਹਾਓ ਜਿਉ ਮਿਲ ਬਛਰੇ, ਗੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵੇ ਕਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਪੇਰ ਘਰ ਆਵੇ, ਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਸਾਰਿੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਬਸੇ ਜਲ ਧਾਰਾ, ਨਰਪਤ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ ਦੇਖ ਪਸਾਰਾ, ਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤ ਜਪੇ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ ਤਨ ਖਾਟੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਗਲਾਟੇ, ਜੇ ਨਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਧ ਪੱਗ ਚਾਟੇ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਦੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਭੀਖਕ ਪ੍ਰੀਤ ਭੀਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਭੁੱਖੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਅਨ ਖਾਏ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਮਿਲ ਆ ਗਹਾਏ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਰਾਸ ਤੁਮਾਰੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੋਚ ਪੂਰ ਹਮਾਰੀ, ਰਹਾਉ ਚੱਕੀ ਪੀ ਸੂਰਜ ਮੁਖ ਲਾਗੇ, ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਤਿਆਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਲਾਗੇ, ਬਛਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਖੀਰ ਮੁਖ ਖਾਏ, ਹਿਰਦੇ ਬਿਕਸੇ ਦੇਖੇ ਮਾਏ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਲਾਏ, ਹੋਰ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕਾਚਾ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਕੂੜਾ ਕੱਚ ਪਾਚਾ, ਜੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਗੁਰ ਸਾਚਾ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਬਣੀ, ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਤਣੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੀ ਕਣੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਬੋਲ ਸਭ ਪਾਪ ਲਹਿ ਜਾਈ, ਰਹਾਉ ਜਬ ਗੁਰ ਰਹਾਉ ਜਬ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਬ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਤਾਵਤ ਪੰਚ ਰਹੇ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਅੰਧੇ ਨਗਰੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਗ ਤੂੰ ਜਿਨਾ ਮੁਖ ਲਾਈ, ਤਿੰਨ ਕੂੜ ਤਿਆਗੇ ਹਰ ਲੇਵ ਲਾਈ, ਤੇ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਮੁਖ ਉਜਲ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹਰ ਆਪ ਹਰ ਭਾਵੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲ ਪਦਰ ਗੁਰ ਪੱਗ ਲਗ ਧਿਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਆਪ ਧਰਾਵੇ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਰਾਪੇ ਜੋਗੀ ਡੰਡਾ ਤਾਰੀ, ਰਾਪੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਬਨਵਾਰੀ, ਰਾਪੇ ਤਪ ਤਾਪੇ ਲਾਏ ਤਾਰੀ, ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਨਾਹੀ ਹਰ ਦੂਰ ਹਾਓ, ਹਰਾਪੇ ਸ਼ਬਦ ਸੋਤ ਤੁਨ ਆਪੇ, ਹਰਾਪੇ ਵੇਖੈ ਬਿਗਸੈ ਆਪੇ, ਹਰ ਆਪ ਜਪਾਏ ਆਪੇ ਹਰ ਜਾਪੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਸਾਰਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਪਿਆਵਣ ਹਾਰਾ, ਹਰ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਬੇੜੀ ਤੁਲਹਾ ਤਾਰਾ, ਆਪੇ ਗੁਰਮਤੀ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਹਰਾਪੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੇ ਪਾਰਾ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਨੀ, ਜੈਸੀ ਤੂੰ ਰਾਸ ਦੇ ਤੈਸੀ ਹਮਲੇ, ਹਰ ਨਾ ਬਣੰਜੇ ਰੰਗ ਸਿਉ ਜੇ ਆਪ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਦੇ, ਹਮ ਬੰਜਾ ਰੇ ਰਾਮ ਕੇ ਹਰ ਬੰਜ ਕਰਾਵੇ ਦੇ ਰਾਸ ਰੇ ਰਹਾਉ, ਲਾਹ ਹਰ ਭਗਤਨ ਖਟਿਆ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਬਖਲ ਲੱਦਿਆ, ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਨੇ ਨ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਬਣਜ ਕਰੇ ਬਾਪਾਰੀਏ, ਅਨੰਤ ਤਰੰਗੀ ਦੁੱਖ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਣਜ ਹਰ ਲਾਇਆ, ਫਲ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਹਰ ਬਣਜ ਸੋ ਜਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਦੇਹੀ, ਜੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਸੇਵਿਆ ਫੇਰ ਲੇਖਾ ਮੂਹ ਨਾ ਲਈ। ਗੌੜੀ ਬਿਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜੋ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ, ਸੁੱਤ ਕੀ ਕਰ ਆਸਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਤਨ ਖੜ ਦੇ ਕਰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾ, ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਰਾਖਦਾ ਦੇ ਆਪ ਹਤਾਸਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਗੁਸਈਆ, ਜਨ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੁਝੇ ਬਡਈਆ, ਰਹਾਉ ਮੰਦਰ ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਭਾਵੇ, ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮੁਖ ਲਗੇ ਜਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਹਰ ਜਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਲੀ ਸਭ ਜਗਤ ਛੜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਜੀਤ ਰੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਈ,
ਹਰ ਭਗਤ ਪੰਡਾਲ ਲਹਾਇੰਦਾ ਆਪੇ ਬੜਤਾਈ ਲਾ ਹਾਟ ਬਿਹਾਜਿਆ ਕਿਆ ਤਿਸ ਚਤਰਾਈ ਜੇ ਰਾਜ ਬਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਸੀ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕਢਾਈ ਜੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਆੜੀ ਗੁਆਰੇ ਦੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰੇ ਲੋਚੇ ਜੀਓ ਲਾਏ ਹਲ ਜੋਤੇ ਉਦਮ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਧੀ ਖਾਏ ਤਿਉਂ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਕਰੇ ਹਰ ਅੰਤ ਚੜਾਏ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਗਤ ਕੀਜੈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹਰ ਲਾਏ ਹਮ ਕਾਮ ਰਹਾਉ ਲੈ ਤੁਰੇ ਸੌਦਾਗਰੀ ਸੌਦਾਗਰ ਤਹਵੈ ਤਨ ਖੱਟੇ ਆਸਾ ਕਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਵੇ ਤਿਉਂ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲਤਾ ਹਰ ਬੋਲ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਲਿਖ ਸੰਚੇ ਹਟਬਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਹਾਟ ਕਮਾਏ ਮੋਹ ਝੂਠ ਪਸਾਰਾ ਝੂਠ ਕਾ ਝੂਠੇ ਲਪਟਾਏ ਤਿਉਂ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਧਨ ਸੰਚਿਆ ਹਰ ਖਰਚ ਲੈ ਜਾਏ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕਟੰਬ ਹੈ ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਫਾਸ ਗੁਰਮਤੀ ਸੋ ਜਨ ਤਰੈ ਜੋ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਨ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਨਿਤ ਦਿਨ ਸ ਰਾਤ ਲਾਲਚ ਕਰੇ ਭਰਮੇ ਪਰਮਾਇਆ ਬੇਗਾਰ ਫਿਰੇ ਬੇਗਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਜਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਹਰ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਤੋੜ ਬੰਧਨ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਲਾਏ ਨਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਰਹਾਓ ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇ ਨਰਪਤ ਰਾਜੇ ਅਰਥ ਸਮਾਇਆ ਕਹਿ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਡਾਨ ਲੇ ਕਹਿ ਨਰਪਤ ਮਰ ਜਾਇਆ ਧਨ ਧਨ ਸੇਵਾ ਸਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਿਤ ਸੌਦਾ ਸੂਦ ਕੀਚੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਤਾਈ ਜਾਂ ਲਾਹਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਮਨੇ ਤੋਟੈ ਮਰ ਜਾਈ ਜੋ ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰ ਸਿਉ ਕਰੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪਾਈ ਜਿਤਨੀ ਭੂਖ ਅਨਰਾ ਸਾਧਤ ਹੈ ਤਿਤਨੀ ਭੂਖ ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਜਿਸ ਹਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਵੇਚੇ ਸਿਰ ਗੁਰ ਆਗੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਅਸਤਰਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਫਿਰ ਭੂਖ ਨਾ ਲਾਗੇ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਨ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਮਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਹਰ ਆਸ ਨਿਤ ਕਿਉਂ ਦੇਖਾ ਹਰ ਦਸ ਤੁਮਾਰਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਸੋ ਜਾਣਤਾ ਹਮਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਹਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਨਹਾਰਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸ਼ਨ ਪਰੇ ਹਰਦੁਆਰ ਮਤ ਨਿਰਗੁਣ ਹਮ ਮੇਲੈ ਕਬਹੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਹਾ ਰਹਾ ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਗੰਤ ਨ ਆਵੇ ਤੂੰ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ ਰਾਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹਰ ਪਾਵੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਛਡਾਵੇ ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਜਾਏ ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰ ਕੋਈ ਰਾਖੇ ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖ ਲੀਏ ਛੜਾਏ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰਮਾਤਾ ਤੂੰ ਗੁਰਬੰਧਨ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਏ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਧ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾ ਬਿਧ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕਿਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਚੁਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਨ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਉ ਲੁਭਤ ਹੈ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਮਾਇਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਕੋੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨ ਅਨ ਰਸ ਲਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨ ਆਵੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਅਵਗਣ ਸਭ ਮੇਰੇ ਰਹਾਉ ਕਿਛ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਢੰਗ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਲੈ ਬੋਲੈ ਗੁਣ ਬਿਹੂਨ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸੰਗ ਗੁਰ ਉਭਰੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰਾ ਸਭ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨੱਕ ਦੀਆ ਬਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆ ਰਸ ਅੰਨ ਪੁਗਾਣੀ ਜਿਨ ਦੀਏ ਸੋ ਚੇਤਨ ਆਵੇ ਪਸੂ ਹੋਂ ਕਰ ਜਾਣੀ ਸਭ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤਦਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹਮ ਜੰਤ ਬਿਚਾਰੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸਭ ਖੇਲ ਤੁਮ ਸਵਾਮੀ ਜੇ ਨਾਨਕ ਹਾਟ ਬਿਹਾ ਜਿਆ ਹਰ ਗੁਲਮ ਗੁਲਾਮੀ ਗੌੜੀ ਵਿਆਗਨ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜੋ ਜਨਨੀ ਸੁੱਤ ਜਨ ਪਾਲਤੀ ਰਾਖੇ ਨਦਰ ਮਜਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਦੇ ਗਿਰਾਸ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪੋਚਾਰ ਤਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਰਾਖਤਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹੰਬਾਰਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਆਣੇ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਦਾ ਜਿਤ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਏ ਸਿਆਣੇ ਰਹਾਉ ਜੈਸੀ ਗਗਨ ਫਰੰਤੀ ਉਡਤੀ ਕਪਰੇ ਬਾਗੇ ਬਾਲੀ ਉਹ ਰਾਖੇ ਚੀਤ ਪਿਛੈ ਵਿੱਚ ਬਚਰੇ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਹਰ ਕੀ
गुर सिख रखे जी नाली, जैसे काती तीस बत्तीस है, विच राखे रसना मास रत केरी, कोई जानो मास काती के किस हात है, सब वसगत है हर केरी, त्यों संत जना की नर निंदा करे हर आखे पै जन केरी, भाई मत कोई जानो किसी के किस हात है, सब करे कराया जरा अमरा ताप सिरत साप, सब हर के बस है, कोई लाग ना सके बिन हर का लाया, ऐसा हर नाम मन चित नित्यावो, जिन नानक जो अंति औस लय छड़ाया, बड़ी बरागण महला चौथा, जिस मिले मन हुए आनंद, सो सतगुर कही है, मन की दुविधा बिन सजाए हर परम पद लहिए, मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले, और खिन खिन करी नमस्कार, मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाओ, कर कृपा हर मेलिया, मेरा सतगुर पूरा इच्छ पुनी जन केरिया, ले सतगुर तूरा, हर भगत दड़ावे हर भगत सुने, ते सतगुर मिलिए टोटा मूल न आवे, हर लाभ नित दिड़िए, जिसको हृदय बिगास है पाहु दूजा नाही, नानक तिस गुर मिल उदरे हर गुण गावाही, महला चौथा गौड़ी पूर्वी, हर दयाल दया प्रभ किनी, मेरे मन तन मुख हर बोली, गुरमुख रंग पिया अत गुड़ा, हर रंग पीनी मेरी चोली, अपने हर प्रभ की हों गोली, जब हम हर सेती मन मानिया, कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ, करो विवेक समझन पाई, खोज हृदय देख टंडोली, हर हर रूप सब जोत सबाई, हर निकट बसे हर कोली, हर हर निकट बसे जब सब जग के अपरंपर पुरख अतोली, हर हर प्रगट कियो गुर पूरे, सिर बेचियो गुर पैमोली, हर जी अंतर बाहर तुम शरणागत, तुम बड़ पुरख बडोली, जे नानक अंदिन हर गुण गावे, मिल सतगुर हर मिल सतगुर गुर बिचोली, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, जग जीवन अपरंपर स्वामी, जगदीशर पुरख विधाते, जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी, तित मार्ग हम जाते, राम मेरा मन हर से तीराते, सत्संगत मिल राम रस पाया, हर रामे नाम समाते रहाओ, हर हर नाम हर हर जग अवखद, हर हर नाम हर साते, इनके पाप दोख सब बिनसे, जो गुरमत राम रस खाते, जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक, ते गुर संतोख सरनाते, दुर्मत मैल गई सब तिनकी, जो राम नाम रंग राते, राम तुम आपे आप प्रभ ठाकुर, तुम जेवड़ अवर ना दाते, जन नानक नाम ले तां जीवे, हर जपिए हर कृपाते, गौड़ी पूरी महला चौथा, करो कृपा जग जीवन दाते, मेरा मन हर से तीराचे, सतगुर बचन दियो अत निर्मल, जप हर हर हर मन माचे, राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे, जे काल के मुख जगत सब ग्रसिया, मुर सतगुर के बचन हर हम वाचे रहाओ, जिनको बीतना ही हर सेती, ते साकत मूड़ नरकाचे, तिनको जन्म मरनत पारी, बिच विष्टा मर मर पाचे, तुम दयाल शरण पतपालक मोको दीजे, दान हर हम जाचे, हर के दास दास हम कीजे, मन निरत करे कर नाचे, आपे शाह बड़े प्रभ स्वामी, हम बन जा रहे हैं ताचे, मेरा मन तन जियो रास सब तेरी, जे नानक के शाह प्रभ साचे, गौड़ी पूरी महला चौथा, तुम दयाल सर दुख पंजन, एक बिनो सुनो दे काने, जिसते तुम हर जाने स्वामी, सो सतगुर मेल मेरा पराने, राम हम सतगुर पाप ब्रह्म कर माने, हम मूड मुग्ध असुद मन मत होते, गुरु सतगुर के बचन हर हम जाने रहम, जितने रस अन रस हम देखे, सब तितने फीक फिकाने, हर का नाम अमृत रस चाखिया, मेरे सतगुर मीठ रस गाने, जिनको सगुर सतगुर नहीं पेटिया, ते साकत मूड देवाने, जिनके कर्म हीन तुर पाए, देख दीपक मुहे पजाने, जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने, जन नानक हर हर जप प्रगटे, मत गुरमत नाम समाने, गौड़ी पूरी महला चौथा, मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी, कह किते हर पौ नसी है, हर आपे बख्श रहे प्रभ साचा, हर आप छड़ाए छुट्टी है, मेरे मन जप हर हर हर मन जपी है, सतगुर की शरणाई भज पौ मेरे मना, गुर सतगुर पीछे छुट्टी है रहा, मेरे मन सेवो सो प्रभ सर्व सुखदाता, जित सेवे निज कर बसी है, गुरमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस कसिए, मेरे मन
हर हर हर हर जस उत्तम। मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम, लै लहा हर मन हसीए। हर हर आप दया कर देवै ता अमृत हर रस चखिए। मेरे मन ना बिना जो दूजे लागे, ते साकत नर जम कुटी है। ते साकत चोर जिना ना बिसारिया, मन तिनके निक न पिटी है। मेरे मन सेवो अलख निरंजन नरहर, नित सेविए लेखा छुटिए। जिन नानक हर प्रभु पूरे किए, खिन मासा तोल ना कटी है। बड़ी पूर्वी महला चौथा, हमरे प्राण बसगत प्रभु तुमरे। मेरा जियो पिंड सब तेरी, दया करो हर दस दिखावो। मेरे मन तन लोच कनेरी, राम मेरे मन तन लोच मिल हर केरी। गुर कृपाल कृपा किंचित गुर किनी, हर मिलिया आए प्रभु मेरी रहाओ। जो हमरे मन चित है स्वामी, साबे तुम हर जानो मेरी। अंधी नाम जपी सुख पाई, नित जीवा आस हर तेरी। गुर सतगुर दाते पंथ बताया, हर मिलिया आए प्रभु मेरी। अंधिन अंध पिया बड़ पागी, सब आस पूजी जन केरी। जगन्नाथ जगदीशर करते, सब वसगत है हर केरी। जे नानक शरणागत आए, हर राखो पै जन केरी। गौरी पूरी महला चौथा, ए मनुआ खिन ना टिके बहुरंगी। दह दह दिस चल चल हांडे, गुरपुरा पाया बड़ पागी। हर मंत्र दिया मन ठांडे, राम हम सतगुरु लाले कांडे। रहाओ हमरे मस्तक दाग दगाना, हम कारज गुरु बहु सांडे। पर उपकार पुन बहु किया, पौध उतर तार प्रांडे। जिनको प्रीत हृदय हर नाही, तिन कूरे गांडन गांडे। जो पानी कागद बिन सजात है, त्यो मन मुख गर्भ गलांडे। हम जाने कछु ना जाने आगे, जो राखे जो हर राखे त्यो ठांडे। हम भूल चूप गुर कृपा तारो, जे नानक उतरे गांडे। गौड़ी पूरी महला चौथा, काम क्रोध गर्भो परिया। मेरे साधु खंडल खंडा है, पूर्व लिख लिखे गुर पाया। मन हर ले मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पुन बड़ा है। कर डंडौत पुन बड़ा है, रहा साकत हर साध न जानिया। तिन अंतर हमे कंडा है, ज्यो जे चले चुभ है दुख पावे। जम काल सहे से डंडा है, हर जन हर हर नाम सुमाने। दुख जन्म मरण पव खंडा है, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर। बहुत सोब खंड ब्रह्मंडा है, हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे। हर राख राख बड़ बड़ा है, जय नानक नाम अदा टेक है। हर नाम ही सुख मंडा है। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, इस गढ़ में हर राम राय है। किस साध न पावे ठीठा, हर दीन दयाल अनुग्रह किया। हर गुर शब्द चख डीठा, राम हर कीर्तन गुर लि मीठा। रहाओ हर अगम गोचर पार ब्रह्म है, मेरे सतगुरु लाग बसीठा। जिन गुर बचन सुखाने हीरे, तिन आगे आन परीठा। मनमुख हीरा अत कठोर है, तिन अंतरकार करीठा। बिसियर को बहु दूध पियाये, बिख निकसे फोल फलीठा। हर प्रभ आन मिलावो गुर साधु, कस गरुड़ शब्द मुख लीठा। जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा। गौड़ी पूरी महला चौथा, हर हर अर्थ सिर हम बेचिया। पूरे गुर के आगे, पूरे गुर के आगे। सतगुर दाते नाम दड़ाया, मुख मस्तक भाग सपागे। राम गुरमत हर लेव लागे, रहाओ कट कट रमैया राम राम राय। गुर शब्द गुरु लेव लागे, हाँ मन तन देवो काट गुरु को। मेरा प्रम गुर बचनी पाके, अंधियारे दीपक आन जलाए। गुर ज्ञान गुरु लेव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनास्यो। कर बसल ही मन जागे, साकत बदिक माया तारी। तिन जम जोहन लागे, उन सतगुरु आगे सीस ना बेचिया। वे आव है जाहे अपागे, हमरा बिनो सुनो प्रभु ठाकुर। हम शरण प्रभु हर मांगे, जे नानक की लाज पात गुरु है। सुर बेचियो सतगुर आगे। गौड़ी पूरी महला चौथा, हम हंकारी हंकार अज्ञान मत। गुर मिले आप गवाया, हम मैं रोग गया सुख पाया। तन धन गुरु हराया, राम गुर के बचन हर पाया। रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुर मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगे, जिन बिछड़िया हार गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को, गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद पिया मन मोरे, गुर आगे आप बिचाया। हम अपराध पाप भोकिने, कर दुष्टि चोर चुराया। अब नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूरी महला चौथा,
गुरमत बाजे शब्द अनहद गुरमत मनुआ गावे बड़पागी गुर दर्शन पाया तान तान गुरु लेव लावे गुरमुख हर लेव लावे रहाओ हमरा ठाकुर सत गुर पूरा मन गुर की कार कमावे हम मल मल तोवे पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावे हृदय गुरमत राम साइन जेवा हर गुण गावे मन रसक रसक रस हर रस अगहने फिर बहोर ना भूख लगावे कोई करे उपाव अनेक बहु तेरे बिन कृपा नाम न पावे जे नानक को हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दिड़ावे या गौड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदू जप नाम करमा मत माता मत जियो नाम मुख रामा संतोख पिता कर गुर पुरख अजन्मा बड़पागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतरा सदा निर्वाणी जियो बड़पागी मिल सुगड़ सजानी जियो मेरा मंतन हर रंग पिन्ना आवो संतो मिल नाम जपहा बिसंगत नाम सदा लै लहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूर्व लिखेड़े तुरकर्मा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर को हिकेड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत बुठड़ा मिलया हर आया जियो जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा आओ सुखी गुण कामन करीहा जियो मिल संज नारंग मान हिरलियां जियो गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो हर उठे ढोल ढोल मिलिया जियो मेरे मन तन प्रेम लगा हर ढोले जियो मैं मेले मित्र सतगुर बिचोले जियो मन देवा संता मेरा प्रभ मेले जियो हर बिटड़ो सदा कोले जियो बस मेरे प्यारिया बस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन बस जियो मन चिंदेड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुर पूरा वेख बिगस जियो हर नाम मिलिया सुहागनी मेरे गोविंदा मन अंदिन अंदर हस जियो हर पायड़ा बड पागी मेरे गोविंदा नित लै लाहा मन हस जियो राप पाए रापे वेखे रापे कारे लाया जियो एक खावे बख्श तोट ना आवे एक ना फका पाया जियो एक राजे तख्त बह नित सुखिए एक ना भिख मंगाया जियो सब इको शब्द बरतदा मेरे गोविंदा जे नानक नाम त्याया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रत्ता मन माही जियो हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा गुर पूरा अलख लगाही जियो हर ना परगास्या मेरे गोविंदा सब दाल दुख लह जाही जियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा बड़पागी नाम समाही जियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किने हर पव डिठड़ा नैनी जियो मेरा मन तन बहुत बैरागया मेरे गोविंदा हर बाजो धन कुमलैनी जियो संजना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आय मिलया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख बिहानी रैनी जियो मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मन तन भुख लगाइया जियो और रहना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरों हलाइया जियो हर आया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरे मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वादाइया जियो बारी मेरे गोविंदा बारी मेरे प्यारिया हो तुद बिटड़ो सद बारी जियो मेरे मन तन प्रेम परम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सतगुर बिष्ट मेल मेरे गोविंदा हर मेले कर रह बारी जियो हर नाम दया कर पाया मेरे गोविंदा जन नानक शरण तुम्हारी जियो गौड़ी माज महला चौथा जो जी मेरे गोविंदा जो जी मेरे प्यारिया हर पर मेरा जो जी जियो हर आपे कान पाइंदा मेरे गोविंदा हर आपे गोपी खोजी जियो हर आपे सब कट भोगदा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी जियो हर सुजाना भुली मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी जियो आपे जगत पाइंदा मेरे गोविंदा हर आपे खेल है बहुरंगी जियो एक ना भोग भोगाइंदा मेरे गोविंदा एक नगन फिरे नंग नंगी जियो आपे जगत पाइंदा मेरे गोविंदा हर दान देवे सब मंगी जियो भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा हर कथा मंगे हर चंगी जियो हर आपे भगत कराइंदा मेरे गोविंदा हर भगता लोच मन पूरी जियो आपे जल थल बरतदा मेरे गोविंदा रब रहा नहीं दूरी जियो हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा हर आप रहा पर पूरी जियो हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा
हर वेखे आप हदूरी जियो, हर अंतर बाजा पौन है मेरे गोविंदा, हर आप बजाए त्यों बाजे जियो, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा, गो शब्दी हर प्रभ गाजे जियो, आपे शन पवाइंदा मेरे गोविंदा, हर भक्त जना राख लाजे जियो, बड़ पागी मिल संगति मेरे गोविंदा, ज नानक नाम सिद्ध काजे जियो, गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो, मेरा हर प्रभ मित्र मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ मेरा हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो, मेरा नाम सखा हर पाई जियो, गुण गावो संत जियो, मेरे हर प्रभ केरे जियो, जप गुरमुख नाम जियो, भाग वडेरे जियो, हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो, फिर बोहड़ ना पव जल फेरे जियो, क्यों हर प्रभ वेखा मेरे मन तन चाव जियो, हर मेलो संत जियो, मन लगा पाव जियो, गुरु शब्दी पाइए हर प्रीतम राव जियो, बड़ भागी जप नाम जियो, मेरे मन तन बडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो, हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रभ पासा जियो, सतगुरु मत सद नाम सदा परगासा जियो।

संत सोए परम के चित पेना अंधकूप ते तह काढ़ो जह होवो सो प्रसन्न जाके हाथ समर्थ ते कारण करने जोग नानत है उस्तत करो जाऊ क्यो संजोग पौ सलोक टूटे बंधन जन्म मरण सा सेव सुख पाहे नानक मन न बिसरे गुण निध गोविंद राय पौड़ी टहल करो तो एक ही जाते बिरथ न कोय मन तन मुख ही बसे जो चाहो सो होए टहल महता को मिले जाको साध कृपाल साधु संगत तो बसे जो आपन होहे दयाल टोहे टाहे वो पवन भिन्ना में सुख नाहे टले जाम ते दूत तह जो साधु संग समाहे बार बार जाओ संत साधके नान पाप विनाश से काद के श्लोक ठाक न होती तिनो दर जय हो वो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते तन तन पौड़ी ठठा मुन ठाहे नहीं जो सगल त्याग के लपटाही ठह ठह कमाया संग मुए वहाँ के कुशल न कतु हुए ठान परेशान ते संग बसया अमृत नाम तह जी रसया ठाकुर अपने जो जन पाया नानक वहाँ का मन शीत लाया श्लोक डंडोत बंद नानक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते राख प्रभु नानक दे कर हाथ पौड़ी डंडा डेरा ए नहीं जह डेरा ते जान वहाँ डेर का डेरा का संजम घुर कह सब पछान यहाँ डेरा को शर्म कर खाले जाका तसु नहीं संग चाले वहाँ डेरी डेरा डेरा की सो मित जाने जाको ज्येष्ठ पूर्ण भगवान ने डेरा नह चल सच सा संग पाया ना तेजन नह ढोलाया श्लोक टान लगे तरम राय किन्न काल बंद नानक ब्रह जप हरी ही सा संग सन बंद पौड़ी टड्डा टूडत कह फिरो टूडन यह मन माहे संग तुहारे प्रभ सह बन मन कहा फिराहे टेरी टाहो संग संग अहबद विकराल सुख पावो सहज बसो दर्शन देख निहाल टेरी जमे जम रे गर्भ जोन दुख पाहे मोह मगन लपत रहे हों आवे जाहे टहर टहत अब टह परे साजना सनाए दुखे फाहे काट्या नानक लिए समाई हे श्लोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत नाहू ना तू न छुटे निकट न जाओ दूत पौड़ी नाना रांते सिजिए आत्म जीते कोए होमे आन सो लर मरे सो सोबा दू होए मनि मिटाए जीवत मरे गुरपुरे उपदेश मनुआ जीते हर मिले तह सूतन वेश ना को जाने अपनो एक टेकाधार रैन देन सिमत रहे सो प्रभ पुरख पार देन सगल या मन करे एवं कर्म कमाए हुक्म पूजे सदा सुख नानक लिखिया पाए श्लोक तन तन मन तन अर्पत से प्रभु मिला भय मोह नान परम पो काटिये चुके जम की जो पौड़ी तत्ता तास्य प्रीत कर गुणिध गोविंद राय फल पावे मन वास्ते तब तो हारी जाए त्रास मिटे जम तम पंथ की जास बसे मन नाओ गत पाव मत होए प्रगास महली पाव उठाओ ताऊ संग न तन चले रह जो मन है राज सन संग सिमत रहो यह तुहारे काज तहता कछु न हो है जो तपा तो जो ताप नबारे आप कृपाल नानक हमें आप आपे माई बाप श्लोक थाके बहुत काल ते तृप्त

गुरु गवार मन के कामना भी अंते अवसर वार थित पावो गोविंद पजो संतन की सखले प्रीत करो सादेख सो यहाँ साचा असने कारण कारण करावनो साबिद आय के हाथ जित लाव तित लगे नानक जंत अनाथ श्लोक दास एक निहारिया सब कश देवनहार सा सा सिमत रहे नानक दर्श आधार पौड़ी ददा दाता एक है सबको देवनहार देंदे तोटना व्यगंत परे भंडार देन हा सद जीवन हारा मन मूर्ख क्यों ताहे बिसारा दोष नहीं कहू को मीता हा माया मोह बंद प्रभ कीता ददन वारो जाके आपे नानक ते गुरमुख त्रापे श्लोक तर जी रे कटेक तू लाहे बिडानी आस नानक नाम त्याये कार्य आवे रास पौड़ी तदा तब तो मिटे संसंग होए बास तुरते कृपा करो आप तो होए मने प्रगास तन सच तेऊ सच साहा हर हा पूंजी नाम बिसाहा तेज जस शोभा तेह बनया हर हर नाम सरवण जह सुनया गुरमुख जह जप रह समाई नान तै जन मिली बढ़ाई श्लोक नानक नाम नाम जप जपया अंतर बहरंग गुरपुरे उपदेसया नरक नाहे साध संग पौड़ी नन्ना नरक परे ते नाही जाके मंत नाम बसाही नाम दान गुरमुख जो जपते बिख माया मह

जे नानक अन तूरे श्लोक पत रखी गुर पर ताज प्रपंच मोह विकार नानु सुरा दिए अंत न पारा वार पौड़ी पप्पा परमित पार न पाया पावन अगम हराया होत पनीत कोट अपराधु अमृत नाम जपे मिल साधु पर पाच त्रोह मोह मिट नाई जाको राखो आप गोसाई पाशा सत सिर नसो नान दूसर वरना को श्लोक फाहे काटे मिटे मिटे गमन फते पे मन जीत नानक गोते थित पाई फिर न मिटे नित नीत पौड़ी फप्पा फिर तू आया दुलभ दे कलयुग में पाया फिर यह ओ सर चरि नहाथा नाम जपो तो कटिए फासा फिर यावन जान होई एक जपो जप सोई कुर कृपा प्रभ कर निहारे मेल लियो नानक बेचारे श्लोक बिनो सुनो तुम पारवान दीन दयाल गोपाल सुख संपे बो पुरस नानक साध रवाल पौड़ी बब्बा ब्रह्म जानते ब्रह्मा वैष्णो ते गुरमुख साव सोच धर्मा भीरा अपन बुरा मिटावे ताहू बुरा निकट नहीं आवे वैद आपन हो बंधा दोस्त देत आगे को अंधा बात चीत सब रही सियानप जिसे जनाबो सो जाने नानक श्लोक।

सो एके बार मन मूर्ख कहे करे पुकार, जो मांगे तो मांगे बिया, जाते कुसल न काहू थिया, मांगन मांगते के मांग, नानक जाते परे प्राग। श्लोक मत पूरी प्रधानते गुरपुरे मन मंत, जह जन प्रभ अपना नानक ते भगवंत। पौड़ी मम्मा जाऊ मर्म पछाना, फिर सा संग पतियाना, दुख सुख हुआ के समत बिचारा, नरक सुर्ग रह तो उतारा, ताहू संग ताहू निर्लिपा, पूर्ण घट घट पुरख बिसेखा, हुआ रस में वाहू सुख पाया, नानक लिप्त नहीं एते माया। श्लोक धार्मित सुन साजन मबिन हर छुट नाहे, नानक ते बंधन कटे गुर की चरनी पाहे। पवड़ी जजा जतन करत बहु सी विधिया, एक नाम बिन कहो लो सिधिया, जाहु जतन कर हो तो छुटारा, उहा जतन साज संगारा, जा उभरन तारे सब को, वाहे जपे बिन उबरना हो, जाहु तारन तारन सम्राथा, राख लेहो निर्गुण नर नाथा, मन बच कर्म जे आप जनाई, नानक तह मत प्रगटी आय। श्लोक रोसना काहू सांकरो अपन आप विचार, होए इन मन जग रहो नानक नदरी पार। पौड़ी रारा रेन हो तो सब जिया की, तज मान छुटे तेरी बाकी ही, रन दरगे तो सिजे पाई, जो गुरमुख राम नाम लिबलाए, रहत रहत रह जाहे बिकारा, गुरपुरे के शब्द पारा, रते रंग नाम रस माते, नानक हर गुर किन्नी दाते। श्लोक लाल झूठ बिखे ब्याद इहा देही मैं बास, हर हर अमृत गुरम पिया नानक सुख निवास। पौड़ी लल्ला लाभ औखद जाहु, दुख दर्द तह मिटे खनाहु, नाम औखद जह हृदय हितावे, ताहे रोग सुपने नहीं आवे, हर औखद सब कठ है पाई, गुरपुरे बिन बिद नहीं ना बनाई, गुरपुरे संजम कर दिया, ना तो फिर दुख ना थिया। श्लोक वासदेव सर्वत मैं ऊना का तू ठाए, अंतर बार संग है नानकाए, दुराए पौड़ी वाह वैर न करिए काहू, कट का अंतर ब्रह्म समाहू, वह देव जल थल मैं रविया, गुर प्रसाद वेले ही गव्या, वह विरोध मिटे तह मानते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्म चिहन सगले ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक ओंकार तबिहानिया साकत मुग्ध जान, रड़के मुए जो त्रिखा बंत, नानक तक मान। पौड़ी राड़ी मिटे संग साधु, कर्म तरन तत नाम राधु, रूढ़ो जय बस्योरी दमाही, वहा के राड़े मृत बिन साही, राय रागत राय कात साकत गवारा, जे हिये अमद बेकारा, हड़ा गुरमुख राड़े मिटाई ही, निमक माय नानक समझाई। श्लोक साधु के मन ओट ओट गो, उगत स्यान पत्याग, गुर देखिया जे मन बसे, नानक मस्तक भाग। पौड़ी ससा सन परे अभारे, शास्त्र सिमरत बीत पुकारे, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सास सास हम पुलन हारे, तुम सम्राट अगंत पारे, सन परे की राख दयाला, नान तुमरे बाल गोपाला। श्लोक

सुख देता पर भामे सो अगनता असंख कते खिन बख्शनहारा नानक साहब सदा दियारा श्लोक सत को सुन मन मेरे सन परुहाराए उगत सियानप सगल त्याग नानक लहे समाए पौड़ी ससा सियानप छाड़े आना हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना सहस पात करे चुतराई संग तुहारे एक न जाई सो सो जप दें दाती रे जी चले तुहारे साथी सा सेवा लावे जय आपे नानक ताको दुख ना ब्यापे श्लोक हर मुखते बोलना मन बूठे सुख होए नानक साहब में रब रिया थान तन अंतर सोए पौड़ी हिरो कटका सल के पूरे भगवान होवता है सास्ती दुख पंजन गुर ज्ञान हो छुटके होए आनंद तह हो नाही तह आप हते दुख जन्मे मरन संग संग प्रताप हित करना मेरे दिड़े दयाला संत संग होत कृपाला और कछु न किन्हू किया नानक साहब कश प्रभ ते हुआ श्लोक लेखे गत न छुटिए खिनक भूलन हार।

सुख दिए ताए ना जानत तत लाहा माया कारने जैस चुंडन जाए देवन हाद तार प्रभ निमख नमने बसाए लाल झूठ बिकार मो इहां संपे मन माहे लंबण चोर निंद कमह तिन्हो संग बिहाए तुद पावे ता बख्श लियो खोटे सं खरे नान पावे पार्वम पान नीर तरे श्लोक खात पीत खेलत हास परमे जन्म अनेक पवजल ते काडो प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए खेद मिटे साधु मिलत सतगुर बचन समाए खिम गई सच संचयो खायो अमृत नाम खरी कृपा ठाकुर पई अंध सुख विश्राम खेप निभाई बोतला कार्या

मान मान आठ पैर का तुझका ध्यान, जह पर सातवा चार बिहारे तेज प्रभाव को सा सा चितारी, जह पर सा तेरा सुंदर रूप सो प्रभाव सिमर सदा अनूप, जह पर सा तेरी निकी जात सो प्रभाव सिमर सदा दिन रात, जह पर सा तेरी पात्र है गुर प्रसाद नान जस कहे, जह पर साध सुने का ना जह पर सा पेखे बिस्माद, जह पर साध बोले अमृत रसना है जय पर सा सुख सहजे बसना, जय प्रसाद हास्कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है, जय प्रसाद परम गत पाव है जय प्रसाद सुख सह समाव है, ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागो हो गुर प्रसाद नानक मान जाग हो, जय प्रसाद तू पर संसार जिस प्रभु को मूनम बन विसार, जय प्रसाद तेरा प्रताप रेमन मूह ता तो रेमन मूह मूह तू ताको जाप, जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन तिसे जान मन सदा हजूरे, जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तासो जा रे मन मेरे तू तासो राच, जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जप जप सोए, आप जपाए जपे सो नाउ आप गवाए सो हर गुण गाओ, प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास, प्रभु सो प्रसान बसे मन सोए प्रभु दया ते मत तुम होए, सरन दान प्रभु तेरे मया आपो कछु न किन हो लिया, जित जित लावत तित लगे हर नाथ नानक इनके कछु न हाथ, सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह समूता होए, सुनमीता नानक बिन बनता साज ना के चज कथा स्पदी, साध के संग मुख उज्जल होत साध सम सगली खोत, साध सम मिटे मान साग सम परसो ज्ञान, साग सम बुझे प्रभ मेरा साध संग सब होतन वेरा, साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन, साध के मेहमा बारने कौन प्राणी नान साध की शोभा पर माहे समानी, साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा फुरफुले, साध के संग आवे पास पहुंचा साध संग मत रस पहुंचा, साध संग हो साध की रेन साध के संग मनोहर बहन, साध के संग न कतु आवे साध संग अस्तित मन पावे, साध के संग माया ते पहन साध संग नान प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सामी साधु कैसा मां प्रीत, साध संग कैसो ने बैर साध के संग न बिघा पैर, साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा, साध के संग ना ही हो ताप साध के संग तदे सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई नान साध प्रभु बनियाई, साध के संग न कबू तावे साध के संग सासु पावे, साध संग वास्तव गोचर लह साधु कै संग अजर सह, साध के संग बसे थान उचे साधु कैसा महल पहुँचे, साध के संग दे सब तन साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम दान नानक साधु कह कुर्बान, साध के संग सब कुल उधारे साध संग साधन मीत उकटम निसारे, साधु कै संग सो तन पावे जिस तन ते सब को बरसावे, साध संग धर्म राय कर से करे सेवा साध के संग सुभा सुर देवा, साधु कैसा पाप नायन साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्व थाम थान गम नान साध के संग सफल जन्म, साध के संग नहीं कशकाल दर्शन पेड़ तो होते निहाल, साध के संग कलुखत हरे साध के संग नरक पर हरे, साध के संग यहाँ उहा सुहेला साध संग विशर हार मेला, जो इच्छे सो ही फल पावे साध के संग न बिरथा जावे, पार बन साध हृदय बसे नान कुदरे साध सुन रसे, साध के संग सुनो हनाओ साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग ना मानते बिसरे साध संग सर्प निसरे, साध के संग लगे पर मीठा साधु के संग कटका डीठा, साध संग पे आज्ञाकारी साध संगत पे ही मारी, साध के संग मिटे सब रोग नान साध पेटे संजोग, साध के महिमा बेदन जाने ते जेता सुने तेता बख्याने, साध की उपमा ते साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नहीं अंत साध की शोभा सदा ब्यंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची ही साध की शोभा मूच ते मुची, साध की शोभा साध बने आए नान साध पर भेदन पाए, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवन अपेखे किस बिन कोए, नान के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अस्पदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा नलेप जैसे जल में कमला लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सब को सुख, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टमान जैसे राज रंग को लागे तुल्पमान, ब्रह्म ज्ञानी के तीर जे कजुब सुधा को खोदे को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुना नान जो पाप का सह सुभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
जैसे मैं न लागे जलम, ब्रह्म ज्ञान के मन हुए प्रकाश, जैसे तारुक प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान के मित्र सतसमान, ब्रह्म ज्ञान के नाभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उचते ऊंचा माने अपने सप्ति नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्राप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सौ परमया, ब्रह्म ज्ञानी ते कश बुरा न पिया, ब्रह्म ज्ञानी सा समदासी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु।

0: जे तिस मनहु न विसरह। चार लाइना दी पौड़ी है जी, बड़ी सौखी जी है। कुछ समझ आया जो आप हुण इदा पढ़िया? हाँ जी, फर्क लगा? हाँ जी, ज्यादा आनंद आया। हाँ, मैं यही कहना चाहना कि जपजी साहब दे च बहुत आनंद आया, पर प्रॉब्लम अपनी किथे पैंदी आ कि पिछों पढ़ी आने वो भुल जाता है, अगला याद करते हैं, फिर पिछला फिर भुल जाता है, इस तरह हो रहा ना। अच्छा, फिर वह इलाज आ, फिर शुरू कर लो, फिर शुरू कर लो, जिन्ना चिकर शब्द च मन ना टिके। अच्छा, फिर मैं हमेशा आप जी नाल पिछलिया जिन्या भी आप क्लासा कीतिया उहदे विच इक्को गल कहिंदे आ, आपां वोकैबलरी सिखी आ, आपां अर्थ नहीं सीखे, अर्थ बदल जाने आ। जिदा जिदा मस्कीन जी सारी कथा करन तो बाद च कहिंदे वी मेरा जी करदा वी जिन्नियां मैं पिछे रिकॉर्डिंगां कराया ना सारियां डिलीट हो जाण, मैं सारियां गलत कराया आ। क्यों? क्योंकि उन्हां दा स्टेज बहुत उच्ची जा चुकी सी, ते जिहड़ी पिछे कथा करे उहनूं लगदा सी मैं तां गुरबाणी बहुत वड्डी सी, मैं छोटी जी कथा कराया आ। इहदे अर्थ चेंज हुंदे रहिणे आ जी, अर्थ नहीं है तो सेम रहने, पर वर्ड जेड़े आ शब्दार्थ आ वह सेम रहने आ। जे समुंदे आ तो समुंदे ही रहना, वह समुंद नहीं चेंज होना, ग्रामर नहीं चेंज होनी, पर इहदी स्टेज अकॉर्डिंग टू आवर जर्नी विल बी कंप्लीटली चेंज। अच्छा, मैं जे सोचा, आई डिड स्टार्ट 2014, मैं 2014 च पहली बारी जपजी साहब जी की व्याख्या की, उदो प्रेजेंटेशन्स नहीं सी बनाउंदे, गुटका साहब हाथ च हुंदा सीगा ते जेल दे विच ग्लैन पावा दे विच असीं शुरू कीता। बड़ा आनंद आया मैनूं, है ना, क्योंकि हो सकदा शायद महाराज मेरी उत्थे ड्यूटी ना लाउंदे ते मैं भी ना कदी इधर नूं ध्यान दिंदा। फिर आ चीज़ां बनाउणियां शुरू कीतियां, इस चीज़ां शुरू कीतियां, ते इक बड़ी प्यारी बच्ची साडे कोल आउंदी सी, उहदे नाल गल्लां कीतियां ते उह सिखणा चाहुंदी सी, ते मैं कहा चल आपां गुरुद्वारा साहब भी शुरू कर लैंदे हां। वह बच्ची आप तो हट गई पर सानू ला गई, उन्हें 10 पौड़ियां 10-15 कीतियां होनिया, तो उस तो बाद नहीं आई। पर उस तो बाद बच्चों जो असं एक बार जपजी साहब कर लिया, मैं हूँ बंद कर दी क्लास, कहें नहीं वी वॉन्ट अगे करिए जी, सोहला साहब कर लिया, रहरास कर ली, उस तो बाद फिर जपजी साहब शुरू कर लिया। हूँ असं इस तो जपजी साहब मैं लगता उन्हों का हूँ एंड हो जाना थोड़िया वीकों के, फिर असी सवैये शुरू करने हैं सरावक सुध समूह सधारण के वाले, फिर उस तो बाद आनंद साहब, फिर जाप साहब, फिर आसा की वार करांगे। इस सारियां चीजां करन दा फायदा की आ? फायदा यह आ कि उदा भी तो आप टाइम वेस्ट करना, जिहड़ा मन आ ना, मैं उही गल कह रहा सी, अखां ने कहा कि सौं जा तू गुरबाणी पढ़ रहा तेनू नींद आई आ, पर जदों ही इहनू कोई फिल्म दिखाई अखां कहिंदियां हुण नहीं बंद करना, हुण ठीक आ मैं, क्योंकि मतलब की गल सुनना चाहुंदियां आ। बस यही गल आ कि इहनूं आपां समझणा आ वी नहीं, इहनां दे पिछे नहीं चलना। कहो कबीर प्रगट भई खेड, लेले को चूंगा नित भेड। जदों ये शब्द आउंदा आ तां सानूं लगदा पता नहीं कबीर जी की गल्लां कही जांदे आ, इदां कि थोड़ी कदी हुंदा हुंदा वी जिहड़ी भेड आ उह अपने बच्चे दा दुद्ध चुंगी जावे। महाराज कहिंदे तूं तेरा इह कम हो रिहा, तेरी ब्रेन ने तेरी अखां चलाउणियां सी, तेरी अखां तेरी ब्रेन चलाउण लग पईआं आ। कहो कबीर प्रगट भई खेड, कहिंदे खेड हुण मैनूं समझ आ गई आ, हुण मैं पहले पूत पछेरी माई वाला काम बदल दिता आ, हुण माता मत पिता संतोख वाला कर दिता। ते गुरु साहब जी आपां नूं जिन हर हिरदे नाम ना वसियो तिन मात कीजे हर बांझा, उह शब्द हुंदे हुंदे ना, बहुत ही थां दे उत्ते मां नूं मत कहा जाणा, नानक आखे भंगरनाथ तेरी माओ कुचजी आई। इहदा मतलब इह नहीं है वी नानक जी, अच्छा एक जग वाला दा जत्था सीगा ना जी, उन्होंने इस शब्द नूं लैके कहा देखो गुरु नानक जी ने भी गाल कढ़ी, यूट्यूब ते हले भी पई होनी आ। ते मैनूं हैरानी हुई कि तुसी बुजुर्ग चिट्टी दाढ़ी वाले बंदे आ, कम से कम तुसी तां ना नानक जी दे मूंह च गल पाओ भी नानक जी ने भी औखे बोले जी, नानक आखे भंगरनाथ तेरी माओ कुचजी आई। महाराज कहिंदे कि भंगरनाथ तेरी मत जिहड़ी हले भी कुचजी दी कुचजी आ, तेरी मत जिहड़ी हजे तक उजली नहीं होई। होए
1: ਅਤੀਤ ਵਿਰਕਤ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਭੰਗਰਨਾਥ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਹ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਉਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ 23rd ਪੌੜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ 24th ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ